0: कहीं सर
1: क्यों कथा हो कसो
2: लगाए गाए गाए गाए गाए
3: हाय ओ हाय
4: माय लवली बॉय
3: के जो बन साथे को छु
4: तिमीलाई